हर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नितबाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एक।

या जुग मह एक है कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छिडाना देवनहार मन है बिसराना कार हो कृपा जिस है गुसाई एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही श्लोक आवत हुकम विनाश हुकम।

ही बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपा।

पौड़ी कग्गा काल हो मन है एहे बिन हर दूसर नाहे नह होवा नह होवना जत का

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कट यह फासा फिर आवन जान ना होई एक है एक जप हो जप सोई करहो कृपा।

साध संग पतियाना दुख सुख उआकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख बिसेखा वा रसम है वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। श्लोक

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी। अखर महंत्र पवन प्रभ तहारे अखर कर कर वेद बिचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन बखियाना अखर मुकत जुगत पै परमा अखर मुकत जुगत पै परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ काल कलेश तन माहे मिटावौ सिमरौ जास बिसंभर एकै नाम जपत अगंत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखेर कीने राम नाम एक आखे।

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन अनंत कनेरे,

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै।

अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया महे उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम महे उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सोन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध कै संग कलूख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।

अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है हो

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे भगत।

मरणे जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरणे बाणी उचरह साध जन अम्यो चल है चरणे पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरणे।

कबीर जी जिह कुल पूतना ज्ञान बिचारी विधवा कासना पई महतारी जिह नर राम भगत नह साधी जन्मत कासना मो अपराधी रहाओ मुझ गर्भ गए कीन बचिया।

जहें अबोल तहमान ना रहा वा बोल अबोल मद है सोई जस ओहो है तस लख न कोई अलह लहो तो क्या कहो कहो ताको उपकार बटक बीज मेहराव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार अलह लहंता अलह लहंता भेद शय कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन भेदयो पायो अपंग अशेद।

फिर ढूंढ जब आवा। जेह गढ़ गढ़े हो सो गढ़ मह पावा, जेह गढ़ गढ़े हो सो गढ़ मह पावा। नाना रण रूतो नर ने ही करे, ना निवै ना फुन संचरै,

अकुल निरंजन एकै पहाए तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास चौथे चंचल मन पौ गहो काम क्रोध की काम

भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता तेरे भगत, तेरे भगत सलाहन तुध जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक, तेरी अनेक करहे हर पू।

जहाओ हर हर हार कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन विद चित तहे मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा देई।

गुरमुख हर गुण आख बखानी, जब जब नाम मन भया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दृढ़ाया, सत सत सतगुर नाम।

आग कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद कन्हा गुर सेवा ते पहे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

आढ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

सारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा, पारखियां वथ संभाल लई।

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

हथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोल कपाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप

गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने, क्या एह जंत विचारे कही है जो तुद आख बखाने जिसनो

जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट झख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा हर जोग जोग।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा। जल तरंग अरसेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

वट पहागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुर सत

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञानं कल्याण निधनं हर नाम मन रमणं चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

दुख पावे अगै जाए, दूजे पाए कृपी दुख पावे अगै जाए, गुणवंती नित गुण रवै।

हाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजै पाए खुआई।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

पयाण ज्योतिष पावे समरथ सो थीए हिलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो, गुण छोड़।

दिन रस भोग सातन महल सवाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने कंत संभाल है

जाए। एक रोव है पिर है विछुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जाए। सतगुर मिलै तां निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ते आया सुखदाता, दुख विसरिया।

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउ जानौ साकत का बकना इउ जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो

नाही। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पागी। जो

हर तुल्हा, हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपा।